भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल, छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल, छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी, शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी, प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी, नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल, नातिनी ज्वाइँ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी, नातिहरू नयन आदित्य।

यही मिति 2083 असोज 24 गते विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा प्राज्ञ डाक्टर बसन्त ढुंगानाद्वारा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। मोडल सिटी हस्पिटल प्राली बेसी शहर पुरानो लमजुङ मोडल हस्पिटल पुरानै ठाउँमा 14 नम्बर गल्ली फोन नम्बर 0665200004। यही मिति 2083 असोज महिनाको 24 गते शनिबार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को दिन बिहान 11 बजे चरक मेमोरियल हस्पिटल पोखरा का वरिष्ठ नशा स्नायु मानस

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइँ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजू अदिति पलातिनीहरू आर्य आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार नमचुङ।

0: One more time.
1: साथी, मेरे दीदी ने बंदे आए। यो तीस में भाई ले आपने कोशिले बेचरा। दीदी ने कोशिले इंसान बनेगा। हमारी बूढ़े होने लगने हो। बाला आपने पसीना ना बेचने बंदे। अब छोरा ले आपने पसीना बेचरा बाला खाल सब। पार्के राव से बंदे आए। पौधों छोगते।
2: ओहो जो लासो लासो वाली लासो लासो जो जो इस पल तो माला में करोड़े अनुभव क्या
3: माला कालो बार मत वाले मक्का तो 8-10 करोड़े उन्हें नहीं
2: ठीक है सर 2-4 करोड़ बाल
4: दीदी एनो नुक्तो के टाले तो करोड़ को कुरा गोते
5: इतने ओके आले को के टाले 2-4 तोला मार कौन करोड़ लाता तू पुमा पलाकारी

0: to the digital. Enjoy with us.
1: Girlfriend Gitanjali.
2: छ जीवु प्राण ख जीवु सास अले जीवु जीवन ख छ जीवु फुक्क ख जी छन्त यक्को मतिना जी छन्त यक्को यक्को मतिना।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमरा प्राप्त स्मरणीय बेचीशहर नगर पालिक सात भलुवाटार निवासी पार्वता पौडेल को 58 वर्ष को उमेर में यही मिति 2083 असोज 7 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। यस दुखद घड़ी में हामी प्रति समवेदना व्यक्त गर्नुहुने, सहानुभूति प्रकट गर्नुहुने, अंत्येष्टि में जानुहुने संपूर्ण बंधु बांधव इष्ट मित्र छर छिमेक शुभचिन्तकहरुको सहयोग प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यही असोज 21 गते बुधवार 13 दिन को पुण्यतिथि में बेसीशहर नगरपालिका साथ भलुवाटार स्थित आफ्नै निवासमा गहुँत एवं प्रसाद ग्रहण का लागि अनुरोध गर्दछौं। श्रीमान चेतनाथ पौडेल, छोरा विमोचन पौडेल, बुहारी सरिता लामिछाने पौडेल एवं पौडेल परिवार बेसीशहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिटी 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजू अदिति पलातिनीहरू आर्य आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार नमचुङ।

0: कोरोना को रिपोर्ट हेर्दा मलाई ब्लड क्यान्सर देखिएको छ।
1: गफनी मर्छ है।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइँ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजू अदिति पलातिनीहरू आर्य र आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।